0: ईशा नंबर ही बच गया था।
1: रास को फोर
0: फोर
2: हाँ फोर
1: इंतकन नहीं
0: ये
1: इंतकन ना नूना चले दो।